0: रिकॉग्नाइज करते हैं, जैसे किसी चीज में पैथोलॉजिकल चेंजेस आ जाती हैं, तो फिर सभी में वही बोलते हैं ना हम लोग। लेकिन इससे और बारीकी में जाएंगे तो फिर पता चलेगा कि नहीं, एहसास, फीलिंग्स, डिजायर्स जो हैं वो सब में अलग अलग आ जाएंगी। और उसकी एग्जांपल भी मैंने आप सब लोगों को दी थी कि भाई अगर चार पांच पॉट कलर के होंगे, अलग अलग कलर हैं हर एक पॉट में, उन सभी में से हम लोग एक अलग पॉट में अलग रंग सभी में एक एक चमचा मिलाना शुरू कर देंगे तो आप देखेंगे कि सभी पॉट्स में डिफरेंट कलर आता है, एक जैसा कलर नहीं आता है, क्योंकि उसका अपना भी रंग था ना, उस पॉट का अपना भी तो रंग था ना, इसमें जो एक मिक्स किया गया, जो सभी में एक ही मिक्स किया गया। तो बताना मैं ये चाहता था आप सब लोगों को कि मान लिया जाए किसी को मलेरिया मच्छर काट लिया, और अब मच्छर काट लिया तो हमने कहा कि इसको मलेरिया हो गया। मलेरिया क्यों कहा हमने, क्योंकि कुछ एक ऐसी आइडेंटिफिकेशन थी कि शिवरिंग, ठंड लगकर बुखार हुआ, पसीना आकर बुखार उतरा, ये सब उसकी जो हमारे पास आइडेंटिफिकेशन है जिसके बेस पे हम लोग इसको डायग्नोस करते हैं, या ब्लड के तौर पे उसकी रिंग जो है मलेरिया रिंग चेक करते हैं हीमोग्लोबिन में, या ऐसे कहें कि हमने पैथोलॉजिकली भी और सिम्टोमेटोलॉजिकली भी इसके ग्रुप ऑफ सिम्टम्स को लेकर कह दिया कि इसको मलेरिया है, या किसी को कह दिया कि भाई इसको हैजा है, या किसी को कह दिया कि इसको ट्यूबरक्लोसिस है, उसके आधार पे हमने कह दिया था। लेकिन ये सभी फिजिकल सिम्टम थे। ये मैंने कहा था कि इस जीवन को चलाने वाली कोई चीज आदिक है, पावर है, इंडिविजुअल है, सभी की अलग अलग है। और जिस तरह वो पॉट्स में कलर अलग अलग हो गए थे ना, इसी तरह ही जब कोई बीमारी, या ऐसे कहें कि कोई जरासीम किसी बॉडी पे इफेक्ट करता है, तो उसके सामने जो विजिबल सिम्टम्स हैं, फिजिकल सिम्टम्स हैं, वो तो एक तरह के हो सकते हैं, लेकिन इससे ऊपर जो उसका लाइफ फोर्स है, जो इस जीवन की एक्चुअली रिस्पॉन्सिबल पार्टी है, अगर उसके लेवल पे जाकर उसको हम शनाख्त करना शुरू करेंगे तो वो हमें अलग दिखाई दे। कोई जो है आपने देखा होगा कि मलेरिया के लोग होते हैं कि उनको ठंड लग रही है, कपड़ा नहीं लेना चाहते, पसीना आ रहा है, गर्मी आ रही है, कुछ लोग बोलते हैं कि नहीं पानी नहीं पीना है, कुछ लोग बोलते हैं कि पानी पीना है, और इस तरह ही अलग अलग तरह की क्रेविंग्स हमारी होती हैं, और खाने में भी, पीने में भी, रहने में भी, बात करने में भी अलग अलग तरह की हमारी फीलिंग्स होती हैं, वो सभी पेशेंट में अलग अलग होगी। और ऐसा भी है कि एक आदमी की जो नेचर पहले थी बीमार होने से पहले, अब वो बीमार हो गया किसी भी बीमारी से, तो उसकी नेचर में, उसकी फीलिंग में, उसकी डिजायर में, उसके एवर्शन में चेंज आ जाती है। लेकिन हम लोग इन चीजों को रिकॉग्नाइज नहीं कर रहे, हम क्योंकि हम लोग मटेरियल तौर पे इस्तेमाल कर रहे हैं ना बात को। मटेरियल का मतलब है कि आजकल की मॉडर्न मेडिकल साइंस हर चीज को फिजिकली देखना चाहती है, कि बंदा तो कह रहा है कि मैं बीमार हूं, और बंदा उसी वक्त डॉक्टर के पास जाए और डॉक्टर उसी वक्त उसको भेजे लैब में, तो लैब के टेस्ट जो भी आएंगे वो कहेंगे भाई तुम तो बीमार नहीं हो, क्योंकि तुम्हारे तो टेस्ट नॉर्मल हैं। क्योंकि हम लोगों ने मेडिकल स्टैंडर्ड ऑफ हेल्थ जो निर्धारित किया है, उसका स्टैंडर्ड हमने निर्धारित किया है, और वो स्टैंडर्ड एक एज एन एवरेज स्टैंडर्ड है, ऐसा नहीं है इंडिविजुअल स्टैंडर्ड नहीं है। किसी आदमी को टेम्परेचर अगर होता है 98.4 हमारा, किसी का सब नॉर्मल ही रहता है, उसी में ठीक रहता है। अगर किसी का 98.4 हो जाता है या 99 हो जाता है तो वो बहुत फीवरिश महसूस करता है। और इसी तरह ब्लड प्रेशर की एग्जांपल मैंने आप सब लोगों को दी थी कि कुछ लोगों को ब्लड प्रेशर 120 हम नॉर्मल मानते हैं, डायस्टोलिक 80 हो गया या सिस्टोलिक जो है 120 हो गया, ये हम नॉर्मल मानते हैं। लेकिन कुछ ऐसे लोग भी हैं अगर उनको 120-80 हो जाता है तो वो बोलते हैं कि चक्कर आ रहे हैं, क्या हुआ है ये, इसने क्या साबित किया? इसने ये साबित किया कि मेडिकल स्टैंडर्ड ऑफ हेल्थ जो हमने एज एन एवरेज लिया था वो सभी पे फिट नहीं बैठता, वो सभी के लिए इंडिविजुअल है, और हर आदमी का वो इंडिविजुअलिटी है। तो क्या हुआ कि लैब से टेस्ट आया तो टेस्ट ने कहा कि तुम्हारे तो टेस्ट सब नॉर्मल आए, मतलब क्या हुआ कि हमने जो स्टैंडर्ड ऑफ हेल्थ फिक्स किया था वो एज एन एवरेज लिया था और सभी के लिए नहीं था। तो ये बात कहकर मैं आपको साबित ये करना चाहता हूं कि हर आदमी एक दूसरे से इंडिविजुअल है और उसकी फीलिंग्स, डिजायर्स, अवर्शंस दूसरों से इंडिविजुअल हैं, बेशक बेशक सेल तक उसकी बनतर सेम है, उसी तरह का कार्यक्रम है सेल का, उसी तरह की स्ट्रक्चर है सेल का, उसी तरह सारी कार्रवाई वो सेल करते हैं। लेकिन जहां तक उससे ऊपर के लेवल की बात आ जाती है तो वो एक दूसरे से भिन्न है, एक दूसरे से अलग हैं। तो फिर ये कहकर बात मैंने आप सब लोगों को ये पहचानने की कोशिश की थी कि अगर हर आदमी इंडिविजुअल है और अगर हर आदमी में जो इस शरीर को चलाने वाली पावर है वो इनविजिबल है, पावर है, तो मतलब सिर्फ ट्रीटमेंट तो उसका करना चाहिए ना। असल में ट्रीटमेंट तो उस चीज का होना चाहिए जो इस शरीर के नॉर्मल और एबनॉर्मल हर तरह के कार्यक्रम के लिए जिम्मेवार है। कोई बादशाह अगर किसी देश पे कब्जा कर लेता है तो क्या होता है, उसके थाने, उसकी कचहरी, उसके सब जितने भी कार्यक्रम कानूनी कर चलने वाले हैं वो सब तो सेम ही रहते हैं, लेकिन कानून बदल जाता है, कार्रवाई बदल जाती है, क्योंकि अब नए बादशाह की चलती है। तो मतलब क्या हुआ कि हमारी जीवन शक्ति जो शरीर में है वो इनविजुअल पावर है, इनविजिबल पावर है, और अगर हमने उसको कुछ हेल्प करनी है, क्योंकि कोई इसी तरह की वबा ही है जो इस आदमी के ऊपर इफेक्ट की, उसकी वाइटलिटी के ऊपर इफेक्ट की, वाइटलिटी मजबूर हो गई कि इस शरीर का चलन बदला जाए, इसमें पसीना लाया जाए, इसको ठंड लगाई जाए, इसको प्यास लगाई जाए, इसको अनकवर किया जाए, कवर किया जाए, ये सब जितनी भी हरकतें हम करते हैं, प्यास लगे ना लगे ये सब हरकतें हैं, ये उस चीज की हरकतें हैं, ये उस चीज की फीलिंग एंड सेंसेशन है जो इस शरीर की जिम्मेवार है, जो इस शरीर की नॉर्मल और एबनॉर्मल कार्रवाई की जिम्मेवार है। अगर वो नॉर्मल और एबनॉर्मल कार्रवाई की जिम्मेवार है तो फिर मतलब क्या, जैसे मैं फिर दोबारा रिपीट कर रहा हूं कि अगर किसी को मलेरिया मच्छर ने काट लिया तो उसका एक इन्फ्लुएंस है, उसका एक इन्फ्लुएंस है जिसको वैसे आम बोली में एशंस कह देते कि ये इस दवाई का एशंस है, ये इस चीज का एशंस है जी। इसी तरह उसका जो इन्फ्लुएंस उसने बॉडी पे इफेक्ट किया, बॉडी में जो रेफरेंस भेजा ब्रेन को, ब्रेन तक तो हमने पढ़ लिया ना पूरा कुछ कि ब्रेन के नर्व के साथ ये बॉडी हमारी जुड़ी हुई है, ब्रेन से ये जो लैंग्वेज थी वो डीकोड हुई, उस पावर तक पहुंची, उसने क्या फील किया, उसको इरेडिकेट करने के लिए जो सिम्टम उसने पैदा किए उसमें शिवृत्ति, जो सिम्टम उसने पैदा किए उसमें पसीना था, जो सिम्टम उसने पैदा किए वो उसमें थर्सलेसनेस थी, या उसमें सिम्टम पैदा किए कि उसमें जो बहुत ज्यादा प्यास लग रही थी, ये सब चीजें उसकी वजह से थी। तो मेरा ये कहने से मतलब ये था कि अगर हम फिजिकल बॉडी को, क्योंकि ये एक्सपेरिमेंट की चीज है, ऐसे विश्वास नहीं हो सकता किसी को, विश्वास इस पर बात पर तभी होगा जब आप इसका खुद एक्सपेरिमेंट करेंगे, और अगर उस चीज को जो असल जिम्मेवार है किसी चीज की, उस चीज को आप पकड़ेंगे, उस चीज को हेल्प की जरूरत है उसी रूप में हेल्प करेंगे, तो कोई भी बीमारी जल्दी ठीक हो जाएगी, तो कोई भी बीमारी आसानी से ठीक हो जाएगी। लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग कर रहे हैं कि इस फिजिकल शरीर को, जैसे किसी की टांगे पकड़ो, सिर तक पहुंचना है तो पांव पकड़ लो, पांव से आगे ऊपर चलते रहो, ये तरीकाकार हम लोगों ने अपनाया हुआ है, और यही डिफरेंस है एलोपैथिक स्टाइल में और होम्योपैथिक स्टाइल में, क्योंकि हम इंडिविजुअल करेक्टर नहीं ले रहे, किसी भी बीमारी के इंडिविजुअल करेक्टर नहीं ले रहे, क्योंकि वो इंडिविजुअल करेक्टर जो है वो हमारी पहुंच से ऊपर की बात है, क्योंकि हम फिजिकल रोग हैं, हम पदार्थ तक ही लिमिट रखते हैं, हम सेल तक ही अपनी खोज रखते हैं, अगर सेल से ऊपर जाएंगे तो अल्टीमेटली हम वहां पर पहुंचेंगे कि इस शरीर का रिस्पॉन्सिबल पार्टी कौन है। मैंने यहां पर पहुंचते हुए मैंने आपको एक एग्जाम्पल और दी थी कि अगर कोई ये कहे कि हवा में लून घोल दो, नमक घोल दो, तो नहीं घोला जाएगा ना, लगता है ये आदमी मूर्ख है, हवा में नमक घोलने की हमारे हमें कह रहा है। लेकिन अगर आप अमोनिया गैस को, गंध को स्मेल करते हो तो आपको पता चलता है कि ये तो अमोनिया की गंध है, इसका मतलब अमोनिया का साल्ट इस गंध में, इस हवा में मिक्स हुआ, तब हुआ जब ये उसकी शेप में आ गया। इसी तरह ही किसी भी बीमारी के जरासीम या किसी भी दवाई का इफेक्ट मटेरियल होते हुए भी उसका जो एशेज है, उसके जो इफेक्ट हैं, वो हायर लेवल पे उस वाइटलिटी पर इफेक्ट करते हैं और वो वाइटलिटी मजबूर हो जाती है उस इफेक्ट के अंदर कुछ इस तरह के सिम्टम पैदा करने के लिए, जिसका हम अलग अलग बीमारी के तौर पे डायग्नोस करके नाम रख देते हैं। और जो मलेरिया काटा है, मच्छर काटा है, तो मलेरिया हुआ है, तो मलेरिया की जितने भी कैटेगरी हैं, तीन चार अमरे बना दी हैं, तो उसके मुताबिक उसके सिम्टम पैदा होंगे। हैजा होगा तो उसके अलग अलग सिम्टम्स हैं, वो अलग अलग फिजिकल रूप में पैदा। ये कब पैदा हुए? ये तब पैदा हुए जब बीमारी पैदा करने वाली चीज का एसेंस ने ब्रेन तक, ब्रेन विजिबल है, ब्रेन हम देख सकते हैं, फिजिकल बॉडी है, ब्रेन ने डीकोड करके इस शरीर की जीवन शक्ति जो इसकी रिस्पॉन्सिबल पार्टी है उस तक पहुंचाए। उसने जो फील किया, मैंने उसकी ये भी एग्जांपल दी थी कि मान लिया जाए आपका उंगली किसी गर्म चीज से टकरा जाती है, तो इमीडिएट एक सेकंड के हजारवें हिस्से में आपको वो ऑर्डर ब्रेन पर पहुंचता है, डी कोड होता है, वहां से होकर वापस ऑर्डर होता है, एकदम उंगली खींच लो। कितना समय लगता है आपको कोई गर्म चीज को हाथ छूने के बाद एकदम खींचने में? इतने समय में हुआ क्या है? आपको नहीं, हम लोग नहीं समझते, लेकिन हुआ क्या है कि ये सेंसेशन नर्व के जरिए ब्रेन तक गया, ब्रेन ने डी कोड करके मन जो हमारा मस्तक है, या ऐसे कहें जो हमारी जो वाइटलिटी है, जो रिस्पॉन्सिबल पार्टी है शरीर के लिए, उस तक पहुंचाया। उसने उसी वक्त उसको ऑर्डर दिया कि उंगली को पीछे खींच लो। तो ये सब बातें करने से मेरा मतलब ये है कि मैं आपको ये समझा पाऊं कि इस शरीर को चलाने वाली बीमारी में या तंदुरुस्ती में चलाने वाली रिस्पॉन्सिबल पार्टी इस फिजिकल बॉडी से ऊपर है, और वही है जो फिजिकल शरीर से ऊपर किसी की इंडिविजुअलिटी, इंडिविजुअल कैरेक्टर को निर्धारित करती है। इसीलिए शुरुआत में मैंने ये कहा कि इवन ट्विन्स होते हैं ना, उसके बॉडी स्ट्रक्चर एक ही जैसे दिखाई देते हैं, लेकिन जब आप उसकी फीलिंग्स, डिजायर, वर्शंस की आप बात करोगे तो डिफरेंट हो जाएगी। और यही बात होती है कि किसी बीमारी का चलन जब भी किसी का प्रकोप किसी के ऊपर होता है, तो उस वक्त उसकी डिजायर, अवर्शन, फीलिंग्स पहले से बदल जाती है। जैसे वो बादशाह वाली मैंने बात कही, थाने वही, कचहरियां वही, कार्यक्रम वही, लेकिन रूल अब डिफरेंट हो गया। और जो रूल डिफरेंट हो जाता है, दैट इज एक्सप्रेस्ड बाय फिजिकल बॉडी। जिससे मैंने कहा कि प्रोजेक्टर में फिल्म रखी हुई है, उसमें कोई स्पॉट आ गया है, अब उसमें से जो स्पॉट का वो जो पिक्चर हमारे पर्दे पर दिखाई दे रही है, वो बड़ी दिखाई दे रही है, अब पर्दे को हम आगे पीछे कर रहे हैं। जो सिद्धांत अभी हम लेकर चल रहे हैं, क्योंकि हम मटीरियलिस्टिक हो गए हैं ना, तो मटीरियल तक ही हमारी पहुंच अप्रोच है, और उसको मानते हुए हम लोग उस पर्दे को आगे पीछे कर रहे हैं। यहां पर आकर मैंने आप सब लोगों को ये भी कहा था, उल्टी वाली मैं वोमिटिंग वाली एग्जांपल भी मैंने आपको दी थी, कि जो कुदरत, जो आपकी वाइटलिटी इस शरीर के साथ करना चाहती है, या जो उसको तकलीफ है वो आपको पहुंचाना चाहती है, आपने कुछ ऐसा खा लिया जो इस बॉडी को एक्सेप्टेबल नहीं है, वो ठीक नहीं उसको लगता, उसको वो निकालना चाहती है। वो एक्सप्रेस क्या कर रही है? उल्टी, जी कच्चा होना, मतलाना, वो इससे पैदा कर रही है। और हम लोग क्या कर रहे हैं? मटीरियल बॉडी होते हुए मटीरियल चीज को समझते हैं और हम लोग उसको उसी वक्त खत्म करने की कोशिश करते हैं। इसीलिए तो आपने देखा होगा ना कि बहुत सी बीमारियां दवाई खाने के बाद और बढ़ जाती है, घबराहट, परेशानी और बढ़ जाती है, और हम लोग बोलते रिएक्शन हो गई, साइड इफेक्ट हो गए। असल में क्या है कि वी आर वर्किंग अगेंस्ट द विल ऑफ अवर वाइटल फोर्स। जो वाइटल फोर्स थी, जो वो चाहती थी कि मेरी हेल्प की जाए, ये शरीर में जो अंदर जो चली गई है वो अनडाइजेस्टेबल है, डाइजेस्ट नहीं हो रही, इसको बाहर निकाला जाए, या इसके जो इफेक्ट हैं इस बॉडी के सेलों को डैमेज करेंगे, इसको बाहर निकाला जाए, और आप जबरदस्ती कोई दवाई करते हो जिससे वो इफेक्ट बंद हो जाए, मतलब पर्दे को इधर उधर कर रहे हो, तो अल्टीमेट कुदरत क्या करेगी? परेशान हो जाएगी कि क्या करें आप। कोशिश वो करेगी, फिर भी इस जब तक जीवन है, जीवन स्ट्रांग है, तब तक ये अपने आप को ठीक करने की कोशिश करेगी, घबराहट में हो जाएगी, इसको टॉयलेट टट्टी लगा देगी, डायरिया लगा देगी जिसे वो निकले। अगर नहीं हुआ तो जब तक उसको वो अंदर से न्यूट्रलाइज नहीं कर लेती जो आपके अंदर गया था और उल्टी पैदा हुई थी, तब तक ये घबराहट ये परेशानी आपके साथ बनी रहे। तो ये बात करके भी मैं आपको वही पहुंचाना चाहता हूं कि असल इस बॉडी का जो इंडिविजुअलाइजेशन करेक्टर है जिस पे के बेस पर हमारा जीवन चलता है, अगर हम उसको फॉलो करेंगे तो फिर हम उस लेवल पे पहुंच जाएंगे कि अगर इस जीवन को चलाने वाली कोई इंडिविजुअल शख्सियत इस तरह की है जो इनविजिबल है, तो फिर हम दवाई भी उसी तरह की ही देने की कोशिश करेंगे। और इससे आगे अगर हम चलें, आपने देखा होगा कि एक आदमी शब्द पढ़ रहा है, एक आदमी बंसरी बजा रहा है, एक संगीत चल रहा है, कुछ लोग रोने लगते हैं, एक आदमी स्टेज पे खड़ा हुआ लेक्चर कर रहा है, और लेक्चर करते करते वो लोग इतने जोश में आ जाते हैं वो मरने मारने पर चले उतारू हो जाते हैं। ये कहां असर हुआ? शरीर पे नहीं हुआ, किसी हायर लेवल पे हुआ, क्योंकि आपके शरीर के अंदर तो कुछ किया ही नहीं, आपके हर लेवल पे कुछ ऐसा हुआ है। और वो हर आदमी का नहीं होगा, सभी के सभी वहां बैठे सुनने वाले संगीत सभी रोएंगे नहीं, सभी नहीं रोने वाले, और वो लेक्चर सुनने वाले लोग सभी के सभी किसी को मरने मारने पर उतारू नहीं हो जाएंगे। हर आदमी की फीलिंग उस पर इंडिविजुअल होगी। इसीलिए मैं ये चाहता हूं कहना आप लोगों को कि आप लोग बीमारी के तौर पर भी समझें, आप लोग इस शरीर की बनतर के तौर पर भी समझें, तो ये महसूस करें कि इसके चलन के रुकावट के लिए जो भी इसके चलन मतलब इसकी फिजियोलॉजी में, इसकी फिजियोलॉजी में अगर जो भी रुकावट आ रही है उसके पीछे या उसके लिए जिम्मेवार इसके ऊपर हायर स्टेज है। हाँ, क्वेश्चन आ सकता है यहाँ पर कि भाई अगर चलते चलते एक्सीडेंट हो गया, टांग टूट गई, आप इसको अंदर का कहाँ करें भाई? नहीं, फिर भी वो वाइटलिटी ही जिम्मेवार है। मैं इसको फिर आपको समझाऊं कि अगर मुर्दे की टांग तोड़ दो, मुर्दा तो है ही, लिविंग बींग नहीं है अभी, उसकी टांग तोड़ दो तो उसमें कभी सूजन नहीं आएगी, कोई ब्लड भी नहीं निकलेगा, कोई उसको दर्द भी नहीं होगी, और जितने भी सिम्टम्स लिविंग बीइंग में उस एक्सीडेंट के पैदा होंगे ये सब साबित करेंगे कि सम हायर पावर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस बॉडी। ऐसा हो जी, तो मेरे कहने से मतलब कि हर हालात में ही वो एक बॉडी, वो एक चीज इनविजिबल जो है हमारे शरीर की, वो ही इफेक्टेड होती है, उस पर ही किसी बीमारी का इफेक्ट होता है। डॉक्टर हैरिंग हुए हैं मेडिकल साइंस में, तो डॉक्टर हैरिंग ने कहा कि अगर जरासीम ही बीमारी पैदा करने वाले हैं तो लेट्स टेक, उसने वो जो घोल था कॉलरा बेसिलस का तो उसने पी लिया, तो कहता है मुझे कॉलरा हो जाना चाहिए ना, हैजा हो जाना चाहिए ना, नहीं हुआ। इसी तरह ही ये कौन रिस्पॉन्सिबल था कि मेरी वो वाइटलिटी इससे स्ट्रॉन्गर थी, उसको इफेक्ट नहीं हुआ। इसी तरह ही लोग मिसमेराइज करते हैं, मिसमेराइज करते हैं। तो मैं तो जब मेडिकल कॉलेज में पढ़ाता था तो मैं तो बहुत सारे लोगों को मेडिकल मिसमेराइज करता था, हिप्नोटाइज करके बहुत सी बीमारियां मैं ठीक करता था। मेंटल रोग जो, मेंटल बीमारियां क्या है, शारीरिक तौर पर सब कुछ सही है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उसके हायर लेवल पे कुछ ऐसे डिफेक्ट आ गए हैं, उस हायर लेवल के इफेक्ट से बाद में ऐसा हो सकता है सेकेंडरी कि भूख नहीं लगती, नींद नहीं आती, कुछ ऐसे आ जाते हैं, लेकिन इफेक्ट जो है वो हायर लेवल पे ही है। और मैंने इस तरह के बहुत सारे केसेस ठीक किए हैं जिनको हिप्नोटाइज करके भी हम लोग दुरुस्त करते थे, और वो अभी तक जिंदा हैं, वो अभी तक ठीक ठाक हैं, अभी तक उनको कोई इस तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं आई। तो ये वंडरफुल इफेक्ट है क्योंकि हमने उसकी वाइटलिटी को, जो असल में रिस्पॉन्सिबल पार्टी थी इस शरीर के जीवन की चलन की, उसको स्ट्रांग किया था। और ये भी एक ऐसा प्रोसेस है इस साबित करने के लिए कि अगर हम उस इंडिविजुअल पावर तक अप्रोच करने के काबिल हो जाएं, चाहे मेडिसिन से, चाहे हिप्नोटिज्म से, तो हम बहुत सी बीमारियां जो इसकी वजह से पैदा हुई हैं, इसमें आए हुए विकार की वजह से पैदा हुई हैं, वो ठीक हो सकती हैं। और इसीलिए ही हम लोग इंडिविजुअलाइजेशन पर बहुत ज्यादा जोर देते हैं। होम्योपैथिक तौर पे मॉडर्न मेडिकल साइंस जो है, जो केवल फिजिकल तक अपना लेवल रखती है, उस तक अगर करते हैं तो फिर हम सेल तक रह जाते हैं। और उसकी परिभाषा भी मैंने आप सब लोगों को पहुंचा दी थी कि भाई ये एक लेवल है, लेकिन इस लेवल के लिए पाव सेल में जितने भी चेंजेस आ रही हैं, जिसको हम आगे पैथोलॉजी बोलते हैं, इन सब चेंजेस के लिए भी रिस्पॉन्सिबिलिटी उस हायर वाइटल पावर की है। और इसकी एग्जांपल मैंने आप सबके सामने रखी थी कि जितने भी डॉक्टर लोग हॉस्पिटलों में काम करते हैं, मान लिया जाए टीबी के वार्ड में काम करते हैं, सभी को टीबी तो नहीं हो जाती। जितनी भी नर्सें हैं सभी को टीबी तो नहीं हो जाती। या मैंने एग्जांपल आपके सामने रखी थी ये कोविड-19 की, तो कोविड-19 जो था सभी को तो नहीं हुआ, सभी ने वैक्सीन प्रोटेक्शन भी नहीं ली, सभी मर तो नहीं गए, हालांकि बहुत सारे लोग मर गए उस वक्त। कोविड-19 जब शुरू हुआ तो बहुत सारे लोग मर गए। इसी तरह की बहुत सी चीजों, जब जितनी बीमारी, इवन इन्फ्लुएंजा भी जब महामारी के तौर पे आया था, तो उस वक्त हजारों लोग कोविड की तरह मर गए थे इसी तरह। और ऐसा ऐसा कोई भी बीमारी अगर आती है हमारी खुद की जीवन, जब मेडिकल साइंस नहीं थी तब भी तो लोग जिंदा रहते थे ना, तब भी उनको बीमारियां होती थी, बहुत सारे लोग मर जाते थे, रिकॉर्ड है हमारे पास। लेकिन ये भी रिकॉर्ड होना चाहिए साथ में कि बहुत से लोग बच गए थे, बच जाते हैं, इसीलिए हम अभी तक जिंदा हैं, उनकी जनरेशन हम आगे चल रहे हैं। तो मेरे कहने से मतलब ये है कि ये सब चीजें साबित करती हैं कि फिजिकल से ऊपर भी कोई ऐसी चीज है जो हर चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है। शरीर की हर एक्टिविटी, चाहे तंदुरुस्ती की हो चाहे है बीमारी की हो, उन सब के लिए रिस्पॉन्सिबल पार्टी वही है। और इसी तरह ही दूसरा फेज इस चीज का, ये एक फेज मैंने आपको सब बता दिया कि बीमारी या तंदुरुस्ती इस शरीर की, बेशक मटीरियलिस्टिक होते हुए हम लोग सिर्फ टिश्यू चेंज देखते हैं, हम लोग सब सेल में आई हुई चेंजेस ही देखते हैं, लेकिन इस आई हुई सभी चेंजेस के लिए, सबसे छोटी बात तो सेल है ना, सेल में चेंजेस देखते हैं, लेकिन इन सब के लिए भी रिस्पॉन्सिबल पार्टी हमारी कौन है? वाइटलिटी है। और उसका दूसरा पक्ष, दूसरा फेज मैंने आपके सामने रखा था दवाइयों के बारे में। हमारे पास सबसे बड़ी बात तो यही है ना कि बीमार आ गया उसको हम दवाई देते हैं। अब जो दवाई देते हैं, तो दवाई देने के पीछे अगर हम बारीकी से खोज करते हैं ना, तो फिर हमें पता चलता है कि दवाई के अंदर भी एक इंडिविजुअल कैरेक्टर है, और उस इंडिविजुअल कैरेक्टर को फॉलो करने की जरूरत है। इससे पहले मैंने ये कहा था कि हम दवाई कहते किसको हैं। अब बाजार में कोई चीज आप ले आए तो वो सब्सटेंस है, वेजिटेबल समझ लो। मैंने ग्रुप बताया कि आप सब लोगों को कि भाई अभी हम लोगों ने जो कुदरत ने दिया हुआ हमारा भंडार है ना दवाइयों का, जिसे हम दवाइयां बनाते हैं, चाहे वो एलोपैथिक है चाहे आयुर्वेदिक है चाहे होम्योपैथिक है चाहे किसी भी साइंस वाले जो दवाइयां बनाते हैं उनके ग्रुप हैं, जितने भी वनस्पति से दवाइयां बनाते हैं उन सबको हम बोलते हैं वेजिटेबल ग्रुप, और जितने भी मिनरल्स हैं इस ब्रह्मांड में उनसे हम दवाइयां बनाते हैं तो उनको हम मिनरल किंगडम बोलते हैं। इसी तरह ही शरीर के जो लिविंग सिक्रीशन हैं, सिक्रीशन और एक्सक्रीशन के बारे में भी मैंने आपको बताया था कि सिक्रीशन तो वो है जो बॉडी के अंदर से तंदुरुस्त हेल्दी तंदुरुस्त टिश्यू से निकलता है, एक्सक्रीशन वो है जो वेस्ट के तौर पे शरीर से निकाला जाता है, जैसे पेशाब वगैरह हम टेस्ट करते हैं। इसी तरह अंदर के जैसे थायराइड हार्मोन है, पिट्यूटरी हार्मोन है, और अलग अलग हार्मोन है, इस तरह के अलग अलग सिक्रीशन हैं जिनसे हम दवाइयां बनाते हैं, और जो लिविंग बींग से दवाइयां बनाते हैं उनको हम बोलते हैं सारकोड्स, और जो बीमार चीजें हैं और उनका जो एक्सक्रीशन है, एक्सक्रीशन से जैसे स्प्यूटम है, ट्यूबरकुलोसिस की स्प्यूटम है, और इस सब से भी अभी चीजें बनती हैं उनको हम बोलते हैं नोजोल्स। इसी तरह बीमारियों, इसके अलावा भी एक मैंने ग्रुप आपको बताया था जो अभी ह्यूमन बीइंग की जानकारी में, जिसको हम बोलते थे इम्पाउंडेरा भी दिया, उससे भी हम दवाइयां बुलाते हैं शक्ति, जैसे एक्सरे है, जैसे सन रेज है, जैसे मून रेज है, इस तरह की अलग अलग तरह की चीजें रेज हैं जिनका पता है हमें कि अगर हमारे शरीर में उनका डायरेक्ट कॉन्टेक्ट होता है तो हमारे शरीर में किस तरह की तब्दीलियां आ सकती हैं। जैसे धूप में चले जाओ ना तो वो बोलते हैं सनस्क्रीन लगाकर लगा जाओ, ऐसे नहीं जाओ जी, क्यों बोलते हैं, इसीलिए उससे इफेक्ट होते हैं ना। तो इसी तरह ही जितने भी हमने इस तरह के चीजें निकाली उनको हम बोलते हैं इम्पाउंडेरा बीडिया। अब इस सारी कहानी के पीछे हम चीज क्या, अवेज तो अब दिखाई नहीं देते ना, दवाई तो दिखाई देती है ना कि ये मैंने कुनीन से बना ली है, ये मैंने पेंसिल बना ली है, ये मैंने टेट्रासाइक्लिन बना लिया, ये तो मटेरियल आप देख रहे हैं ना। इसी तरह ओपियम की बात है, मैंने ओपियम की एग्जांपल ज्यादा रखी थी क्योंकि सभी लोग आसानी से समझता है, कोस सभी लोग समझते हैं, अफीम सभी लोग समझते हैं, तो मैं आसानी वाली वो एग्जाम्पल आपके सामने रखी थी कि भाई पहली तो बात यह है कि कोई सब्सटेंस आपने बाजार से ले लिया, वो एक वेजिटेबल है या वो एक मिनरल है या कुछ भी है। अब जब उसे हम दवाई बनाते हैं तो फिर हम उसको बोलना शुरू कर देते हैं ये मेडिसिनल सब्सटेंस है, इससे दवाई बनती है, और उसके बाद फिर जो दवाई बन जाती है तो सवाल पैदा होता है कि दवाई कहते किसको है। हम दवाई उसको बोलते हैं कि भाई किसी भी सब्सटेंस का हमारी बॉडी के साथ क्या संबंध है, या हमारी बॉडी के नॉर्मल चलन को कोई सब्सटेंस कैसे तब्दील करता है, कैसे इफेक्ट करता है। जैसे वो लेक्चर करने वाली बात मैंने आपको बताई थी, उसी तरह ही इसका मतलब ये हुआ, मैं वही लाना चाहता हूं आपको, कि किसी भी सब्सटेंस का हमारे शरीर पर क्या इफेक्ट होता है उसको हम उस दवाई का इफेक्ट समझते हैं। और जब हम इसकी बारीकी से खोज करते हैं तो हम, वैसे साइंसों की बात तो मैंने लंबी हो गई कि भाई ये अगर नेचुरल फार्म में इसको इस्तेमाल कर लिया तो उसको हम बोलते हैं आयुर्वेदिक, और ये नेचुरल फार्म वही पोस्ट वही अफीम है, उससे पैथोजन मार्फिन निकाल दिया तो हम बोलते हैं ये एलोपैथिक हो गया। अगर इससे भी ऊपर अब जाएंगे तो एक्चुअली क्या है, हर एक सब्सटेंस में जो चीज हमारे शरीर को इफेक्ट करती है ना, किसी भी दवाई की, किसी भी सब्सटेंस की, किसी भी ग्रुप की, तो उसको हम उसका बोलते हैं एक्टिव कंस्टिट्यूएंट्स। अफीम या कोस के अंदर क्या है जो हमारे शरीर को इफेक्ट करता है, वो मटेरियल कोस की बात नहीं कर रहे हम, इसके अंदर कुछ ऐसी पावर होगी ना जिस जो हमारे शरीर को इफेक्ट करती है। फिजिकल लेवल पे इफेक्ट करना ड्राइनेस पैदा करेगी, फिजिकल लेवल पे कोई नशा वगैरह करते हो तो जो सुरूर जो जिसको हम बोलते हैं वो हर लेवल पे है। बॉडीली चेंजेस क्या है, अफीम खाइए कबल हो गई है, अफीम खाइए एकदम चुस्ती फुर्ती हो गई है, फिजिकल लेवल पे जो उसका इफेक्ट हुआ ये हुआ, लेकिन हायर लेवल पे भी इसके कुछ इफेक्ट होंगे। और इसी तरह ही हर सब्सटेंस का जो हमारी बॉडी पे इफेक्ट होता है, बॉडी ना कहें हमारे लाइफ पे जो इफेक्ट करना है ये कहना चाहिए, ये ज्यादा दुरुस्त लफ्ज होगा, और उसको हम बोलते हैं एक्टिव कंस्टिट्यूएंट्स। और जो एक्टिव कंस्टिट्यूएंट्स है ना वो हर सब्सटेंस का अपना अपना वक्रा है, वो इंडिविजुअल है, वो किसी से मैच नहीं करता, अलग होता है। इसकी एग्जांपल भी मैंने आप सबके सामने पहले प्रोग्रामों में रखी थी कि जैसे सुहागा है बोरेक्स ग्राम, जैसे चीनी है मीठी है, साल्ट लून है, सोडियम क्लोराइड वीएबी की वाइट है, सभी चीजें तो वाइट है, फटकरी है वो वाइट है, और लेकिन इसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, जो छोटी छोटी क्लासों में हम पढ़ते थे ना, लो चून का मिश्रण अलग करो जी, कैसे करोगे जी। तो इसी तरह ही ये सब चीजें आ गई, पूरी पीस कर रखी हुई हैं, तो कैसे आप आइडेंटिफाई करेंगे। ठीक है, कुछ फिजिकल एक्सपेरिमेंट्स हम करेंगे, कुछ केमिकल एक्सपेरिमेंट्स आप करेंगे, बहुत सारे सब्सटेंसों के लिए फिजिकल केमिकल एक्सपेरिमेंट्स में फिर कुछ ऐसे सब्सटेंस आ जाएंगे जो एक दूसरे के साथ सिमिलर दिखाई देंगे, यार इसको क्या करें। तो अल्टीमेट जो साइंस है ना, मेडिकल कली साइंस ने ये इसका डिस्कर्स निकाला, ये नतीजा निकाला कि एक और तरीका कार है जिसको हम लोग बोलते हैं थेराप्यूटिक वे ऑफ आइडेंटिफिकेशन। मैं वाइटलिटी पे जाना चाहता हूँ, याद ये रखना कि हमारा असल पॉइंट वो है कि वाइटलिटी पर पहुंचने के लिए हम ये कह रहे हैं कि सभी फिजिकल भौतिक सभी केमिकल रासायनिक जितने भी एक्सपेरिमेंट्स हमने कर लिए उसके बाद भी कुछ सब्सटेंस ऐसे लगे कि यार इनकी रिएक्शन भी वैसी ही है, इसका दिखने का ये इधर उधर का ये सब एक ही तरह है। तो फिर उसके बाद एक वे आउट निकाला गया कि हाउ इट इफेक्ट्स द ह्यूमन बॉडी। कोई भी चीज किसी अगर फटकरी नमक से अलग है, अगर फटकरी सुहागे से अलग है तो क्यों अलग है? तो उसको जो भी सब्सटेंस हम दवाई के तौर पर इस्तेमाल करते हैं उन चीज का जो इफेक्ट है हमारी बॉडी पे वो हर आदमी पे इंडिविजुअल होगा। जो पहली बात मैंने पॉट्स की आपके सामने की थी कि हरेक पॉट में अलग अलग रंग है, ये साबित करने के लिए कि हर बंदा इंडिविजुअल है और उसमें एक ही तरह का रंग हमने मिलाना शुरू किया, बोरक्स दिया, फटकरी दी, साल्ट दिया, तो हर चीज जो है हमारे शरीर को इंडिविजुअल तौर पे अलग तौर पे इफेक्ट करेगी। फटकरी की तरह लून नहीं करेगा, नमक की तरह गोरक्स नहीं करेगा, ये चीजें अलग अलग तौर पे हमारे शरीर पे असर करेगी। और असर कहने का मतलब ये नहीं है कि केवल फिजिकल शरीर पे, असर ये है कि आपकी फीलिंग्स में तब्दीली आ जाएगी, आपकी डिजायर एवर्शन में तब्दीली आ जाएगी। तो ये क्या था जिसको हमने कहा एक्टिव कंस्टिट्यूएंट्स, एंड दोज एक्टिव कंस्टिट्यूएंट्स आर नॉट विजिबल किसी भी चीज की। वो जो माइन्यूट पावर है, जैसे मैं हिप्नोटाइज की बात कर रहा था, वो जो माइन्यूट पावर है जो हमारे उस वाइटलिटी पे जो इनविजिबल पावर है उस पे इफेक्ट करते हैं। इसीलिए ही दवाइयां का मटीरियल योग जो है उसका लेवल जो है हमारी फिजिकल बॉडी पे होता है, उसके जो इफेक्ट बाद में पैदा होने वाले हैं वो हमारी वाइटलिटी से पैदा होते हैं कि ड्राइनेस हो गई है जी, अभी खाई थी ड्राइनेस होगी, अब तो कब्ज होगी जी। इस तरह के जितने भी सिम्टम हमारे पैदा होते हैं फिजिकल लेवल पे जो अफीम ने चेंज कर दिया सभी लोग जानते हैं। फिजिकल लेवल पे आपने कोई नशा खा लिया जो शरीर में पैदा होता है वो आप सब जानते हैं, लेकिन उसके बाद जो पैदा होने वाले इफेक्ट होते हैं वो ये हैं कि आपकी चीज का इफेक्ट ब्रेन तक गया, ब्रेन ने डीकोड करके हायर लेवल तक वाइटलिटी तक पहुंचाया, अब वाइटलिटी क्या फील कर रही है वो आपके सामने आ जाएगा। तो अगर हम वो जानना चाहें, अगर वो हम समझ जाएं कि हरेक दवाई का ही एक्टिव कंस्टिट्यूएंट है, तो फिर अगर उस एक्टिव कंस्टिट्यूएंट की परिभाषा मींस सिम्टम्स और इट इफेक्ट्स अवर बॉडी, हमारे शरीर को वो कैसे असर करती है, अगर वो हम जान लेंगे, वो जानेंगे तो तभी ना लिविंग बींग जीवन है बंदा, उस जीवित बंदे को देंगे तभी पता चलेगा। तो अगर हम ये एक्सपेरिमेंट्स बजाय गिनी पिग पे, बजाय लोअर एनिमल्स पे टेस्ट करने के बजाय अगर हम लोग यही लिविंग बींग लिविंग ह्यूमन बींग करेंगे तो फिर हमें उनके वो एक्टिव कंस्टिट्यूएंट्स पता लग जाएंगे जो बिल्कुल एक दूसरे से इंडिविजुअल होंगे, और जो जिनका जो करेक्टर है वो उसका इंडिविजुअल करेक्टर होगा कि ये रंग हमने पॉट में मिक्स किया तो असल इसका करेक्टरिस्टिक क्या था और असल इसने हमारे जीवन पे कैसे इफेक्ट किया अलग अलग लोगों में। अलग मैं सवार और आसान कर दूं, कुनीन आप सभी लोगों को दे दें, कुनीन आप सारे सभी समझते हो ना, कुनीन आप तीन चार आदमी को अलग अलग दे दो, अगर फील करोगे कि जो उसके फिजिकल सिम्टम है वो तो सभी में एक तरह के आएंगे लेकिन उसके जो हायर लेवल के एक्टिव कंस्टिट्यूएंट्स के इफेक्ट हैं फीलिंग डिजायर अवर्शन कुरीन खाने के बाद वो सबका वक्रम अलग अलग होगा। तो अगर हम हर बीमारी में हर एक दवाई को इस्तेमाल करते हुए उसके एक्टिव कंस्टिट्यूएंट्स को साथ में ले लें या ये समझ लें और एक्टिव भूल जाए बीमारी को, भूल जाए शरीर को कि इसमें क्या क्या चेंजेस हुई, ओ कैंसर हो गया इतना बड़ा कोड़ा हो गया ये कैसे करेगा कैसे ठीक होगा, या बहुत बड़ी चीजें जो डेवलपमेंट हुई है बॉडी में वो हम देख लेते वो कैसे ठीक होगी तो हमारे लिए परेशानी हो जाती, फिर हम सर्जरी की तरफ दौड़ते हैं या काटो इसको फेंको। पर जिस चीज ने वो चीज पैदा की है जो डाइवर्टेड है, जो चेंज है फिजियोलॉजी से पैथोलॉजी में आ गई है और उसको हम काट कर फेंकेंगे तो उसका मतलब ये नहीं कि हमने बीमारी को रूट आउट कर दिया, क्योंकि वो हायर लेवल से शुरू हुई थी। उस हायर लेवल को अगर आप समझ के चीज करना शुरू करेंगे तो ये मैं आपको बोल रहा हूँ, मेरे 52 साल के एक्सपीरियंस में बहुत सी चीजें ऐसी आई हैं जिनको हम एक्सपेक्ट ही नहीं करते थे कि ऐसा हो सकता है और वो हुई है। क्योंकि हर बंदा एक्सपेरिमेंटर है, हर बंदा नए नए तौर पे अपनी जिंदगी में एक्सपेरिमेंट करता है। ठीक है, डॉक्टरों की किताबें हम लोग पढ़ते हैं, पुराना जो एक्सपेरिमेंट हुए वो पढ़ते हैं, उसी के आधार पे फिर हम लोग आगे एक्सपेरिमेंट्स करते हैं तो पता चलता है कि नहीं ऐसा होता है। सो बड़ी बड़ी चीजें जिनको हम सर्जरी से काट रहे हैं, बड़ी बड़ी चीजें उस वाइटलिटी के या किसी दवाई के एक्टिव कंस्टिट्यूएंट्स को मिलाने से कुदरत क्या चाहती है? ट्यूमर बना दिया ना किसी जगह, कुदरत क्या चाहती है कि ये ट्यूमर किस तरह बना है उस चीज को रेडिकेट किया जाए और वहां से हुआ है, डेड बॉडी को ट्यूमर नहीं होगा ना। तो लिविंग बीइंग ने आपको बताया, जैसे उल्टी की साधारण सी बात थी ना, उल्टी क्यों पैदा होती है? इसलिए पैदा होती है कि या तो एक्सोटॉक्सिन है कि बाहर से हमने कुछ चीज दे दी शरीर में जो शरीर को, जो वाइटलिटी को सेट नहीं बैठी, वो इसको निकालना चाहती है, या इंडोटॉक्सिन है कि शरीर के अंदर के आजाम जितने भी ऑर्गन्स हैं उनमें कोई डिफेक्ट पैदा हो गया है और वो जो डिफेक्ट पैदा हो गया है उसको कुदरत किसी तरह ठीक करने की कोशिश करती है और आपको सिम्टम के जरिए बताना चाहती है कि ये चीज है। अब इस उल्टी को तो उससे नहीं न मिलाएंगे, अगर कोई गलत चीज खा ली तो उल्टी आई है, ये समझना आपका काम है कि ये एक्सोटॉक्सिन नहीं है कि आप कहेंगे भाई तुमने ये खा लिया तो आप नहीं खाना, ठीक हो जाएगी। लेकिन जो अंदर के अंग खराब हो गए, कुछ ऐसा हो गया जिसका मतलब बहुत लंबे समय से कोई चीज चल रही थी उसकी वजह से किडनी फेल हो गई है, अब यूरिकेशन बढ़ गया है, अब उसके हिसाब से वोमिटिंग आ रही है तो वो तो उससे ठीक नहीं ना होगी, वो तब तक नहीं ठीक होगी जब तक वो चीज अंदर से जो किडनी वाली है वो ठीक नहीं होगी। अब वो कैसे ठीक होगी? अब उसको फिजिकल तौर पे हम समझेंगे तो फिर हम सर्जरी तक पहुंचेंगे, निकालो इसकी किडनी, दो हैं कोई बात नहीं एक से चल जाएगा, यही कुछ हम कर रहे हैं। लेकिन ये वेरीफाइड फैक्ट है जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, ये वेरीफाइड फैक्ट है कि अगर आप उस वाइटलिटी की परिभाषा समझ जाएं तो उसको क्या चाहिए उन सिम्टम के बेस पर वो आपको बता रही है, जैसे उल्टी की बात बता रही थी, तो इस तरह की जितनी भी बीमारियां हैं वो सब ठीक हो सकती हैं, बहुत शॉर्ट टाइम में ठीक हो सकती है। मैंने आपको कई बार एग्जाम्पलें दी हैं, यहाँ लोकल अमेरिका की एग्जाम्पलें दी हैं, ब्रेन ट्यूमर कैंसर के मैलिग्नेंट हो गए जिनके एक एक दो दो बार सर्जरी भी हो गई, वो लोग भी ठीक हुए हैं, वो लोग भी ठीक हुए हैं। क्यों ठीक हुए हैं? कि हमने उसके एसेंस की मैच की, क्या दे रहे हैं हम, हमने उसकी वाइटलिटी के जो सिम्टम्स थे ये तो एक्सरे ने बता दिया कि भाई इसके ब्रेन में ट्यूमर है, पैथोलॉजी है, चेंज है, सब कुछ हो गया है। अब डॉक्टर लोग जो सर्जरी करने वाले भी, मैंने आपको बताया था कि सर्जरी भी हो चुकी, दो बार भी सर्जरी हो चुकी, फिर दोबारा इरप्ट हो गया, तो क्या हो गया? मतलब हम लोग जो कर रहे थे वो ये था कि बिल्ली तो आ रही है, कबूतर बोलता हम आंखें बंद कर लेते हैं, ये दिखाई ही ना दे हमें, वो हम कर रहे हैं। लेकिन अगर हम ये समझें इंडिविजुअल कैरेक्टर कि वो वाइटलिटी जो इसके अंदर जिंदा है, जिसने ये ट्यूमर पैदा कर दिया है, जिसको हम आज मैलिग्नेंट कह रहे हैं, एकदम तो मैलिग्नेंट नहीं हुआ है ना, और वो एक भाषा में आपको बता रही है, अगर आप वो भाषा समझ रहे हैं, इंडिविजुअल फीलिंग डिजायर अवर्शन अगर आप समझ रहे हैं और फिर उसको उस दवाई के जो एक्टिव कंस्टिट्यूएंट्स हैं, क्योंकि अब तो हमारे पास बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स हो गए ना जिससे हमें एक्टिव कंस्टिट्यूएंट्स जानते हैं। अब जब हैनीमैन ने ये काम शुरू किया था तो उसने सिर्फ 24 मेडिकेशंस का एक्टिव कंस्टिट्यूएंट्स प्रूव किया था, एक्सपेरिमेंट के तौर पे लोगों के ऊपर प्रूव किया था। अब तो हमारे पास 3000 से भी ऊपर मेडिसिन है और उनके एक्टिव कंस्टिट्यूएंट्स हम जानते हैं, और अगर कंस्टिट्यूएंट्स को जानकर ही मैच करके के क्या डिजायर है, कि वाइटलिटी क्या चाहती है, अगर उसके मुताबिक उसका ट्रीटमेंट किया जाएगा, उसी तरह की उसको हेल्प दी जाएगी, तो बड़ी से बड़ी बीमारी भी ठीक हो जाएगी। ये बात अलग है कि कुछ बीमारियों में ऐसा होता है कि हमें या तो दर्द तकलीफ या उम्र समय नहीं देती, अलाउ नहीं करती कि भाई अब इसको वाइटलिटी को ठीक करते करते किसी चीज को तो लगेंगे 6 महीने, अब जीवन इतना समय नहीं देता या तकलीफ इतना समय नहीं देती, तो फिर हम क्या करते हैं, नहीं ये तरीका ठीक नहीं, वो जल्दी वाला टीका कर देते हैं। तो वो जल्दी वाला टीका करते हैं लेकिन फिर दोबारा इरप्शन होना शुरू हो जाता है, फिर दोबारा वही चीजें पैदा होनी शुरू हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि हमने असल उसका निवारण नहीं किया होता, और जब तक हम असल निवारण नहीं करेंगे वही बीमारियां बार बार आपके सामने आती रहेंगी, बार बार आपका उसी तरह का उपचार होता रहेगा और ये एक सिलसिला उसी तरह चलता रहेगा, बंद नहीं होगा। समझने की जानने की जरूरत हमें ये है कि हमें दवाइयों के एक्टिव कंस्टिट्यूएंट्स जानने हैं, और हमें वो एक्टिव कंस्टिट्यूएंट है ना, वो भी उनकी भी वही परिभाषा है जो हमारी वाइटलिटी की परिभाषा है। उसको दवाई को देने के बाद शारीरिक सिम्टम भी आप देखते हैं, मेंटल सिम्टम भी आप देखते हैं। मेंटल कहाँ से है? उस वाइटलिटी से है। क्या फील करते हैं आप? तो इस मैंने आपको समा थोड़ा रह गया, मैं आपको याद करा दूं कि मैं हॉस्पिटल में इस तरह के बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए कि हमने सिम्टम आपके ले लिए। ये ध्यान से सुनने वाली बात है कि मैंने आपके सिम्टम्स ले लिए, सिर्फ मेंटल सिम्टम क्या, आपकी मेंटल फैकल्टी क्या बोलती, वाइटलिटी आपकी क्या, फिजिकल सिम्टम बीमारी आपको कुछ भी थी, आप पेट दर्द कह रहे थे, आप रसौली कह रहे थे, आपको उसको एक तरफ रख दीजिए। मैंने आपके मेंटल सिम्टम का आपकी वो बोली जो आपकी वाइटलिटी बोल रही है, मेरा जी कच्चा हो रहा है, मेरा ऐसा हो रहा है, ये वो वाइटलिटी के सिम्टम्स हैं। तो मेरा मन नहीं करता, नींद नहीं आती है, मेरे भूख नहीं लगती, मेरा बात करने को मन नहीं करता, ये वो वाइटलिटी के सिम्टम्स हैं। तो मैंने उनको देखा, उसके बाद उसी आदमी का एक बाल मैंने दिया। ये एक बार नहीं किया मैंने, बहुत बार एक्सपेरिमेंट किया, और आप लोग भी अगर करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, जितने भी सुन रहे हैं वो एक्सपेरिमेंट ये कर सकते हैं। एक बाल लिया, रूट आउट किया रूट से, और वही दवाई जो मैं समझता था कि इसकी वाइटलिटी के मुताबिक है, उसको हमने अपनी तली के ऊपर रखा, हाथ के ऊपर, और वही जो बाल था उसके साथ चुहाया। वो पेशेंट जो था मेरे टेबल के, मेरी कुर्सी, मेरा टेबल, टेबल के दूसरी तरफ चेयर पर बैठा हुआ था, और अल्टीमेट आफ्टर सम टाइम्स उसी ने वही सिम्टम मुझे बताने शुरू कर दिए जो सिम्टम उस मेडिकेशन के एक्टिव कंस्टिट्यूएंट्स के थे। कोई वाइब्रेशन इस तरह भी होती है, तो इसका मतलब ये क्या है, तब तक इस पर विश्वास नहीं हो जाता जब तक आप इस तरह का एक्सपेरिमेंट खुद नहीं करते, तब तक आपको हिप्नोटाइज पर भी विश्वास नहीं होगा, जब तक आप खुद इस चीज को नहीं करते तब तक आपको ये जो होम्योपैथिक सिद्धांत है या इसकी दवाइयां जो वाइटलिटी के तौर पे, पावर के तौर पे हम देते हैं, पावर का मतलब एक्टिव कंस्टिट्यूएंट्स मीन्स जो आपकी वाइटलिटी के तौर पे, क्योंकि नमक हवा में नहीं घोला जा सकता, ये मैंने आपको बता दिया, लेकिन घुला जब ये अमोनिया गंध उसमें आनी शुरू हुई तो साबित ये होगा कि ये घुल गया है उसमें। जब आप वो समझना शुरू करेंगे, हर बीमारी में, हर इंडिविजुअल बंदे में उसकी जो डिजायर वर्शन फीलिंग्स दिखाना शुरू करेंगे, तो हमारे पास तो बहुत बड़ा रिकॉर्ड है ना भाई, अब तो मेडिकल साइंस में बहुत बड़ा रिकॉर्ड आ गया कि हम हर चीज को उसका क्या इफेक्ट हमारी वाइटलिटी पे हुआ, लोड इवन एलोपैथिक स्टाइल में भी बेशक उसको रिकॉग्नाइज करें या ना करें, लेकिन हर दवाई चाहे पेंसिलिन दो, टेट्रासाइक्लिन दो, क्लोरोफेनिकल कुछ भी दो, लेकिन उसके बाद शारीरिक इफेक्ट के बाद अगर हायर लेवल पे आप देखना चाहेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपकी वाइटलिटी इस दवाई को खाने के बाद क्या कह रही है, और यही उसके फर्स्ट जो इम्प्रेशन है वाइटलिटी के ऊपर वही उसके एक्टिव कंस्टिट्यूएंट्स के इफेक्ट हैं। यानी मैंने तो क्विनीन के साथ शुरू किया था ना, कि क्विनीन देनी शुरू की और उसके बाद देखा कि इसके पास कैसे सिम्टम पैदा होते हैं। मलेरिया वाले सिम्टम तो पैदा हो गए, वो फिजिकल एक्सप्लेनेशन था कि भाई क्विनीन, इसका मतलब क्विनीन मलेरिया भी पैदा कर सकती है। जो आदमी किसी को कुर्सी पे बिठा सकता है वो उसको कुर्सी से उठा भी सकता है, दोनों की बराबर बराबर है। ये तो वो एक्सपेरिमेंट था, लेकिन उसके बाद ऐसा था कि इस बंदे में इंडिविजुअल फीलिंग क्या पैदा हुई, जहां से उसने कहा कि नहीं सभी मलेरिया के केसेस के लिए क्विनिन ठीक नहीं है। फिजिकल लेवल पे तो ठीक है लेकिन सभी पेशेंट्स के लिए क्विनिन ठीक नहीं है। क्यों? क्योंकि तो उसका इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक या इसका क्विनिन का जो एक्टिव कंस्टिट्यूएंट्स है वो उस पर मैच नहीं करता। तो इस तरह हम मेडिकल साइंस के इस इंडिविजुअल कैरेक्टर को अगर अपना लें, अगर सिर्फ यही देखना शुरू करें, हर बीमारी में ये ठीक है टाइम लगेगा। लेकिन हाँ, बहुत से लोग बोलते हैं कि भाई ये तो बहुत देर वाला काम है, ये कौन करेगा। क्योंकि अगर आपको क्योर की परिभाषा का पता हो ना, तो फिर आप ये समझेंगे कि टेम्परेरी सप्रेस करना, टेम्परेरी सिम्टम्स को रिलीव करना आपकी डिमांड हो सकती है। अगर कोई चीज अनबियरेबल है तो उसको टेम्परेरी तौर पे आप मैनेज कर सकते हो, कोई बात नहीं है। लेकिन अगर आप उसको इरेडिकेट करना चाहते हो परमानेंटली, तो फिर आपको हल वहीं से करना होगा, वहीं से ये ठीक होगा, टेम्परेरी सफाइस करने। हाँ, ये बात मैंने आपको पहले बोल दी कि कई बार ऐसा होता है कि हम पेन बर्दाश्त नहीं करते और उस पेन के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। और हम लोग ने क्या किया है, अब जितने भी इस तरह के लोग हैं जो पेन को मैनेज कर रहे हैं या जो टेम्परेरी वक्ती तौर पे ज्यादा तकलीफ है उसको मैनेज करते हैं, उसको हमने बोल दिया एलोपैथिक। सबस्टांस वही हैं जो कुदरत ने हमें दिए हैं, उन्हीं से उनको दवाई बनानी है, उन्हीं से हरेक सिस्टम वाले को दवाई बनानी है। लेकिन हमने उसकी डिवीजन बना दी कि जो एक्टिव कंस्टिट्यूएंट्स को किस रूप में, जो एक ड्रग सब्सटेंस की जो पावर है, हाउ इट इफेक्ट्स द ह्यूमन बॉडी, वो जो पावर है उसको ये किस तरह इस्तेमाल करते हैं, फिजिकल रूप में इस्तेमाल करते हैं या उससे माइन्यूट रूप में इस्तेमाल करते हैं। अफीम खा ली या पोस्ट खा लिया तो हम बोलते हैं तो आयुर्वेदिक दवाई है, और मॉर्फिन पैथेडीन निकाल दी तो फिर हम ये समझते हैं कि नहीं ये तो एलोपैथिक दवाई है। और अगर मॉर्फिन पैथेडीन से हम उसके एक्टिव कंस्टिट्यूएंट से भी ऊपर जाते हैं तो इफेक्ट उसके वही रहेंगे जिसके एक्सपेरिमेंट हो चुके हैं। हरेक दवाई जितनी भी हम लोग इस्तेमाल करते हैं उनके इस तरह के इफेक्ट्स महसूस हो चुके हैं, रिकॉर्डेड हैं कि ये ऐसी करते हैं। और अगर उन्हीं रिकॉर्डेड के बेस पर भी हम किसी का ट्रीटमेंट करना शुरू करें और उसी रिकॉर्डेड बेस पर ही हम किसी बीमारी की डायग्नोसिस करनी शुरू करें, किसी इंडिविजुअल पेशेंट की डायग्नोसिस करने, वो बीमारी का डायग्नोसिस नहीं होगा, वो इंडिविजुअल का डायग्नोसिस होगा। अगर बीमारी को छोड़कर बीमारी का नामकरण तो हम कुछ एक सिम्टम से लेते हैं ना, वी टेक फ्यू सिम्टम्स इन टू कॉन्सिडरेशन टू डायग्नोज द डिजीज, बाकी शरीर को हम छोड़ देते हैं। लेकिन हम कह रहे हैं कि अगर हम वाइटलिटी के इंडिविजुअल सिम्टम्स लेकर उसके बेस पे ही ट्रीटमेंट करना शुरू करेंगे तो ये सबसे ज्यादा जल्दी फास्ट किसी भी बीमारी को इरेडिकेट करने का हमारा तरीकाकार होगा। तो आज का समा मेरा समाप्त। मैं गुरदीप सिंह संधू, आपका होम्योपैथी कंसल्टेंट, आपकी सेवा में हाजिर हूं। 9701 सेरा एन कोर्ट, डबलन, कैलिफोर्निया 94568, फोन नंबर 408-687-1899। किसी भी वक्त किसी बीमारी से जूझ रहे हो, ट्रीटमेंट करवाते थक गए हो, तो सेकंड ओपिनियन लेने के लिए कोई फीस नहीं है कंसल्टेशन की। सेकंड ओपिनियन लेने के लिए आप मेरे से कॉल कर सकते हो 408-687-1899। और अगर आप होम्योपैथी के साइंटिफिक तरीके से इलाज करवाना चाहते हैं, एक्टिव कंस्टिट्यूएंट्स के आधार पे ये करवाना चाहते हैं, तो आप कॉल कर सकते हैं 408-687-1899। जाते जाते ये गुजारिश फिर आपसे करता हूं कि भाई अगर इन प्रोग्रामों में आपको कोई लगे कि भाई जानकारी की बात है, अच्छी है, हमारे लिए फायदेमंद है, तो ये बात और लोगों तक भी पहुंचाएं। वो मेरे साथ फेसबुक पे फ्रेंडशिप में आ सकते हैं, वो यूट्यूब मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, वो सबरंग रेडियो स्टेशन में आ सकते हैं, वो रेडियो प्रवास में आ सकते हैं, कहीं भी आप रोजाना इन प्रोग्रामों को 5 to 6 PM कैलिफोर्निया पैसिफिक स्टैंडर्ड टाइम के मुताबिक आप सुन सकते हैं। और हम लोग जीवन की ये चलती हुई यात्रा अब यहां तक ले चले हैं कि अब इस शरीर की बंतर के बारे में मैं आप सब लोगों को बताऊंगा। हेड से शुरू करेंगे हम लोग, सिर क्या है, बंतर इसकी कैसे बनी, इसके अंदर क्या है और ये काम कैसे करता है, और उसके बाद अगर ये बीमार पड़ता है तो कैसे पढ़ता, हम फिजिकल की बात करेंगे, वो जो इंडिविजुअल बात जो मैंने आज की है ना वो उससे हाई लेवल की बात है, ये ठीक है। लेकिन अभी हमारा जो चलन चल रहा है फिजिकल, तो वो बात मैंने बहुत बार कर दी आपसे के सामने कि हम लोग वो साइंस को पीछे छोड़ रहे हैं, जो हमारी साइंस थी ना पीछे, वो इंडिविजुअल करेक्टर तक पहुंचने की वो हम छोड़ रहे हैं, छोड़ दी हमने। जो नर्वस देख कर ही बता देते थे कि तेरे तो फिरनी में नुक्स है, तेरे तो फलानी जगह नुक्स है, अब वो छोड़ आए हैं। लेकिन जो भी अभी है उस चीज को एक्सप्लेन करेंगे, इस शरीर के बारे में आपको बताएंगे और ये बताएंगे कि किस अंग में कोई बीमारी क्यों पैदा हो जाती है, इसकी फंक्शन की है, फंक्शन कैसे चलती है, उसमें रिकावट कैसे आती है। सो ये सब प्रोग्राम अब आगे से चलने शुरू होंगे। कल से ये प्रोग्राम जो पहला प्रोग्राम होगा वो अंग्रेजी में होगा, दूसरा फिर पंजाबी में होगा और उसके बाद फिर तीसरा प्रोग्राम हिंदी में, क्योंकि हरेक भाषा समझने वाला इन चीजों को समझ सके, हरेक आदमी ये समझ सके हम क्या कहना चाहते हैं। सो उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अपने साथ और लोगों को भी जोड़ेंगे और वो भी इन प्रोग्रामों को सुने और फायदा उठा सकते हैं, तो जरूर। रब राखा, आप सबकी अच्छी सेहत के लिए दुआ करता हूं। सत श्री अकाल, आदाब, नमस्कार
1: जी। डॉक्टर साहब थैंक यू, सत श्री अकाल।
2: थैंक यू डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया, बहुत बढ़िया गल है जी, थैंक यू सो मच जी, मिलते हैं जी,
0: मेरे शुक्रिया।
2: थैंक यू चीमा साहब
1: जी, डॉक्टर साहब थैंक यू,
0: थैंक यू जी, मेहरबानी।
2: थैंक यू दोस्तों, ताडा भी स्रोते हो जेडे प्यार ना सुन दे हो, बड़ी मेहरबानी। फिर अगले प्रोग्राम तक मिलते हैं जी, सत श्री अकाल।

0: जब मैं मैसेज करता हूँ लो जी मैसेज कर दी डॉक्टर साहब।
1: जनहित विच सूचना, मशहूर होम्योपैथिक सर्जन डॉक्टर गुरदीप सिंह संधू उम्र दे 75वीं साल दे विच मेडिकल प्रैक्टिस दे 50 साल पूरे होण ते अमेरिकन इकॉनमी दी सब तो माड़ी हालत होण करके ए ऐलान करदे ने कि हरेक बीमार व्यक्ति जो किसी भी उम्र दे विच किसी भी बीमारी दा इलाज करांदा थक गया ता जो भी उसकी जेब इजाजत दिंदी होवे ओही दे के इलाज करवा सकता है। बस इना ख्याल रखियो कि मुर्गी भी ना मरे ते अंडे भी मिलदे रहन, इना दे इलाज करन दी समर्था बनी रहे, घट खर्चे च इलाज हुंदा रहे। कॉल करो 408-687-1899।
0: ਕੱਟ ਕੇ ਕਰਦਾ ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਡਾਕਟਰ।

0: घोड़ा चतुरा एक पैर है ना, या घोड़ा बोलना या चतुर बोलना।
1: एक चतुर नार करके सिंगार, एक चतुर नार बड़ी होशियार, मेरे मन के द्वार ये घुसत जात, अपने ही जाल में फंसत जात, हम मरत जात।

0: जट बकरे बलाउंदे
1: बड़े ना दुखा कमांदे
0: जट बकरे बलाउंदे
1: बड़े ना दुखा कमांदे
0: पर हट जा रकाने नी।

परवाज रेडियो प्रोग्राम दिल की आवाज तुहाडे तक तुहाडे दोस्त अते होस्ट दर्शन सिंह खाक पहुंचाते हैं रोजाना न्यूयॉर्क टाइम 6 PM to 8 PM इंडियन टाइम 4:30 AM to 6:30 AM परवाज रेडियो व्हाट्सएप का नंबर नोट कर लवो 732-874-3259 and 856-397-0301 856-397-0301 तुहाडे अपने होस्ट के दोस्त दर्शन सिंह खक के नाल रोजाना सुनो प्रोग्राम दिल दी आवाज परवाज रेडियो के उत्ते।

0: दोस्तों ये सन दरवेश कलाकार यमला जट।
1: क्या बात है, बड़े पुराना गाना मेनू एक लब्बा सी ते मैं सोचा भी क्यों ना तुहाडी खिदमत विच वी पेश कीता जाए। उम्मीद है कि तुहानू पसंद आया होगा। सो दोस्तों मैं एक अपनी रचना तुहाडे नाल सांझी कर रहा ते तुसी मेनू एक कॉल मार छड्डियो मिस कॉल ते मैं अपनी रचना तो बाद तुहाडियां लाइनां खोल देंगा ते तुहाडे नाल गलबात करनी शुरू करांगा। रब्बा सोहणिया सामने आ भाई, रब्बा सोहणिया सामने आ, लुक लुक के ना जिंद तड़पा, आ विचोले अपने करके लांबे। ठीक है जी। रब्बा सोहणिया सुबा सिंह जी, मैं अपनी रचना सुना ला, मैं आया तुहाडे आ। दोस्तों बहुत ना एक शशो पंजी जी नहीं, कोई अद्धी दुनिया कहती है जी रब ना दी कोई चीज ही है नहीं, कोई कहते बस रब रब भी नहीं सारी दुनिया बनाई है। कुछ विद्वाना का विचार है कि दुनिया ने रब बनाया भाई, ठीक आपो अपने विचार ने। हां जी, कोई भावनावां नाल चलता है, कोई साइंस नाल फिजिक्स नाल चलता है, ते हर एक नू हर एक दा जिहड़ा मतलब की विचार है वह मुबारक। मैं अपने जिहड़े मन दे हाव भाव है ना वह पेश करन लगा कि रब्बा सोहणिया आ सामने आ, लुक लुक के ना जिंद तड़पा, आ विचोले अपने करके लांबे। आ सीधी अख नाल अख मिला, विचोले अपने करके लांबे, सिंधी अख नाल अख मिला, और रब्बा सोहणिया सामने आ। तेनू कहदा डर है किस तो, लुकण वाली कहड़ी गल है इहदे विच, ना तू जल विच ना तू थल विच, पर थां थां तेरे फंदे ने भाई। ना तू जल विच ना तू थल विच, थां थां तेरे फंदे ने, तेरे नाल तों तेरे नाल तों जग लुट के खा ले खा गए। ऐ की ए वी तेरे ही बंदे ने, तेरी वकालत करदे फिरदे ने अगे पिछे। ना तू जल विच ना तू थल विच, पर थां थां तेरे फंदे ने, तेरे ना उत्तों जग लुट के खा गए। कि ए वी तेरे ही बंदे ने, क्यों दुविधा विच गोते देना, और मेरे दिल दा भरम मिटा, रब्बा सोहणिया सामने आ, लोक लोक के ना जिंद तड़पा, विचोले अपने करके लांबे, आ सीधी अख नाल अख मिला, तेरा बा सोहणिया सामने आ। मैं भुख नंग नाल मरदे वेखे भजन तेरे जो गाउंदे ने, लखां दे कातल ठा

दुनिया के मेहरबान दोस्तों, ते परवाज रेडियो फ्रैंकफर्ट दे खूब सुरत सुरोते ए मोहब्बत दा पैगाम देने वाला दोस्ती अते भ्रातरी भाव दियां खुशबुआं खिलारदा वाह वाह।

असली कारण तेल तेल इना दी पुरानी धर्म दी जेड़ी जेड़ा युद्ध इना दे चलदे आए ने 13-4 साल पहला घातक लड़ाइया हुई कदी दुनिया के बहुते हिस्से से इना दा राज सी कदी दुनिया के बहुते हिस्से से उना दा राज सी ए भी काउंट करदा पर अजकल जेड़ा हैगा बहाने कोई लग रहे ने ते गुस्सा कोई हुंदा अगो निर्णय तुसी कर लियो हर एक दे वख वख विचार ने दोस्त जरूरी नहीं तुसी हर विचार नाल सहमत होवो पर विचार रखने वाला अपने विचार रख रहा है।